मैं हां साजन संत मिल नाम जपे हा शीतल शांत सहज सुख पाया आठ शीतल शांत सहज सुख पाया ठांड पाई।

सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा।

चरण कमल गुर के जप हर जप हो जीवा, चरण कमल गुर के जप हर जप हो जीवा, चरण पखार करम गुर सेवा बार जाऊं लखबरिया, जय प्रसाद ए पौजल तरिया जन्नानिक पैसलिया।

हर हर चरण दे और धारे, हर हर चरण दे और धारे, शिव स्वामी सतगुर अपना काज सब हमारे, बुंदार पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत विचारे।

एक होर शब्द विच अपनी जीवन दी ओ झाकी दर्शा रहे ने, जो कौन जो कुछ उन्हां नाल बीतिया, जो कुछ उन्हां नाल कीता गया। कहंदे हन एक वारी दा जिक्र है, मेरियां बाहां बन के लत्तां बन के गठड़ी दा रूप दे के, गठड़ी वंगर जिवें गठड़ी बद्धी हुंदी, मैनू हाथी अगे सुटिया गया। पूजा बांध पिला कर डारियो, पर वाहेगुरु तेरा लख लख शुक्र है, हाथी नू उस गठड़ी विचों पता नहीं कैसा अक्ष पिया, की दिसिया, हाथी चीका मारदा भज गया।

आए मेरे ठाकर तुम राजोर काजी काजी बकबो हस्ती तोर। जेड़ा महावत हाथी ते बैठा सी काजी ओनू कह रहा है महावत तू अपनी सही मेहनत ड्यूटी नहीं कर रहा ते एदी सजा तैनू भुगतनी पैगी। अरे

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही है। कहने ने हाथी तो नमस्कारा प्या कर दिया, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? जेड़ा राम मेरे च बैठा होया वही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हाँ भाई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी की, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल किया, कोई गलत काम ही नहीं किया, सजा किस गल दी? क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले, ले।

मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह गुरु

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है, एडा मीह पै रहा है कि रस्ता नजर नहीं आउंदा। आप पुठी प्यारी तुरदे हुए अद्धे रस्ते

गुरु पातशाह इत्थों हुण पिट्ठ हो रही है, माफी दे देना। ते फिर व्यासा वल तुर पए, गागर जल्दी भरी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं। बाबा अमरदास जी आ सेवा दे

क्योंकि मन विच श्रद्धा सी कि ए जल मैं गुरु वास्ते लेके जा रहे ते सच्चे पातशाह ने इस जल दे नाल इशनान कर जदों जल दी गागर ना टिकन दी खड़ाक होया अंदरों

चुक चुक जा रहे सात सगत बोलो श्री, क्योंकि जितना फल लगता है टैणी नू ओ टैणी उतनी चुकदी चली जाती है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा कीती गुरु अमरदास जी ने, ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए सत्संग।

मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा होए, लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई। सत सिगत बोलो श्री वधाई दीती। से बार आई कोठरी विचों वधाई दीती, मेहता जी वधायों।

मैं ता कालू ने समा लिख लिया और जदों सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक हुए है।

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू लाए। साहबां ने दुख गिने ने बंदे दे, बंदे नाल बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जांदा। जिथे मोह बनिया होवे, प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां धीआं विछड़ जान, दुख वापरदा। मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे, कहिंदे ने वाहगुरू नाल विछड़िया बंदा किन्ना दुखी। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक नित दी भुख, राती सुते खा के दिने फेर खली। हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख की गल जिहड़ी रोटी दी लगदी, एक होर भुख की गल बाबा जी कहिंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आप, मिटण विच ही नहीं आउंदी। सब कुछ हुंदिया सुनिया भुख कायम है, खा पी के भुख कायम है, उस भुख ने बहुता दुखी कीता। रोटी दी भुख बंदे ने जर ली होवेगी, लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी है। एक दुख शक्तवार जमदूत, एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा, लेखा किवें देवांगे, सुरखरू किवें होवांगे। चौथी थां ते महाराज कहिंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए, आ कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जांदा। तू किथे किथे दवाई लावेगा, किस किस दुख दा दारू करेगा, पर जदों गुरु दी रहमत हो जावे ना, सारे ही दुख दूर हो जाते। दुख बिन से पूर्ण पई खाल, कदों जदों गुरु की बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, सतगुरु दयाल हो जान, ये गल वखरी है। सत्संगत इस तो कुछ साहबां ने कहा ना, गुर पूरे जब भय दयाल। ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी, सतगुरु सदा दयाल है भाई। गल इन्नी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं, मैं निम्रता नाल उहदे चरणां ते मत्था टेकिया कि नहीं, मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं। जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई, मत्था टेकिया है, रहमत अवश्य होई, और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए ने। इन्हां नूं दुख किया है ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है। दोख कहिंदे ने दोष नूं, गुनाह करिए ते दुख पले पैंदा। ते पावन बाणी च तोका हुंदी है ना, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक दोष है। मृग नूं कन्ना दा दोष है, सुनन दा कुत्ता शौक है इसनूं, कंडे हेड़े दी आवाज च फस के मारिया ते फड़िया जांदा। मच्छी नूं जीवा दे स्वाद दा रोग है, दोष है। जेवा सादी लीलत लोह, स्वाद दी मारी होई, बाहरों आया गडोआ या बाहरों आया जो कुछ भी मसाला लगा है कुंडी दे नाल, उन्हूं निकल लैंदी है, कुंडी निकल लैंदी है, फस जांदी है। भृंग नूं भंवरे नूं सुगंधी दी तीबर इच्छा ने रोगी बना रखे, पतंगे नूं नेत्रां दी भुख ने, अखां दी भुख ने, रोशनी वेख के बावरा हो जांदा है। हाथी नूं काम दा रोग है, मगर महाराज तां कहिंदे ने बंदे दा की हाल होवेगा। पंच दोख असाध जामे तांकी केत कास, बंदे नूं तां पंजे ही चंबड़े ने, ए कन्नां तों भी कमला, ए नासां तों भी कमला, अखां तों भी कमला, जीवा तों भी कमला, इंद्रियां सारियां तों कमला, काम तों भी कमला, इहदा की हाल होवेगा। सतगुरु जिस दिन कृपा करदे ने ना, उस दिन इन्हां दोषां तों बचाउंदे ने। बंदा जिस दिन दोख तों बच जांदा है, दोष तों बच जांदा है, उस दिन दुख तों भी बच जांदा है, क्योंकि दोष तों ही, दोख तों ही दुख पैदा होंदा है। दोष नहीं रहा, दोख नहीं रहा ते दुख भी नहीं रहेगा। गुर पूरे जब पहे दयाल, दुख बिन से पूरन पही कहार। हुण सतगुरु ते रहमत कर दित्ती, मैं की करां, मैनू की करना चाहीदा। साहिबां ने साडे वल संकेत कीता कि हुण तू अपना फर्ज पछाण। गुरु ने तैनूं दोषां दे चिक्कड़ विचों कढ के दुखां तों बचाया, तैनूं की करना चाहीदा। ओ संकल्प महाराज ने बख्शिया है, पेख पेख जीवां दर्श तुम्हारा, सतगुरु जुड़िया रवां तेरे नाल।
चरण कमल जाई बलिहारा तेरे चरणा तो वारने बलिहारने जांदा रवां तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा अज तेथो विछड़ गए मुड़के दोष आ गए मुड़के दुख आ जाणगे तेरे बिना कौन है जो बचाई रखे दोषां तो ते दुखां तो साध संगत से प्रीत बन आई पूर्व कर्म लिखत तुर पाई एवी तेरी रहमत जप हर हर नाम अचरज प्रताप भगती च लग के ऐसी सोहनी गल बनी है ऐसा आश्चर्य प्रभाव वाला काम होया प्रताप वाला काम होया कि जाल ना साके तीने ताप हुण आद ब्याद उपाद वापर नहीं सकते हुण ता मेरे ते रहमत करो मेरे सतगुरु निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे तुहाडे चरणा कमलों तो एक पल वास्ते भी ओझल ना होवां ओले ना होवां भुल ना जावां तुहानू नानक मांगे दान प्यारे मैं तो यही दान मंगदा निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे बंदा एक चादर दी बुकल मारी तुरिया जा रहा सी सिखा ने वेखिया कहन लगे महाराज कोई सुइया जापदा है कोई खुफिया जापदा है जासूस लगदा है जेड़ा किले दे नेड़ियों लंघिया जांदा है मूह सिर छुपा के तुरिया जांदा है बुकल कैसी मारी सू पुछे बंदा तू ऐसे बड़ी ठंड वापरन डई किवें बुकल मारी सू जरूर एदे कोल कोई गुझे हथियार होने ने और सू लैण वास्ते तदे अपने आप नू छुपा के ये अपने नेड़े तेड़े फिरदा है महाराज कहन लगे फड़ लो सिखा ने जाके केर लिया फड़ लिया रोंदा धोंदा कुरलाउंदा बाहां छुड़ाउंदा तरले मारदा गुरु के हाजिर कीता गया साहब कलगीधर पातशाह कहन लगे कौन है तू मूह नंगा करके कहन लगा पातशाह तुहाडी शोभा महिमा सुनी मैनू गरीब नू कोई नहीं जानदा मगर गरीब नवाज तुहानू सारे जानदे ने मैं भी जानना जो कोई तुहाडे बारे सुने है मैं बेनती करांगा मैनू खिमा कर दिओ कौन है तू कहन लगा जी पठान पुत्र हां ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸਾ ਇਧਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਚਾਦਰ ਖੁਲਾਓ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਢੱਕਿਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋ ਏਕ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈ ਮਨ ਚਿਤ ਬਹੁਤ ਵਫਾਵੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੇਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਗਹਿਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੋਈ ਜਾਨੀ ਪਰਦਾ ਕੱਜਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਇਹਦਾ ਖੇਸ ਇਹਦੀ ਚਾਦਰ ਲਾ ਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਰੀਲ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਤਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸਾ ਦੇਸੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੇ ਐਸੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਡਾਕੂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ
रोटी खादियां कई चिर हो गया है, मंगना मेरी शान के खिलाफ है। कैसी प्यारी गल है, जिसले साखी पढ़ने पठान कहता है मंगना पठान की शान के खिलाफ है। सिख वास्ते भी एवे पावन बाणी कहती है, लोक तिकार कहे मंगत जन, मांगत मान ना पाया। मंगण वाले का कोई मान नहीं, तरकारा तो मिल सकदियां ने, मान नहीं मिल सकता। इसे करके गुरु का सिख मंग के नहीं खादा करके खाता, मान नाल छकदा, दरकार नाल नहीं खाण नूं तैयार। कहिंदा जी पठान पुत्रा मंगण जोगा भी नहीं, भुखा दा मारिया लुटन जोगा भी तां नहीं, मेहनत मजदूरी भी कोई नहीं मिलती। कई तरहां दा भुखा दा मारिया, अज मैं यह फैसला कर रहा सी भी जो मिल गया खा लेना, ते मरिए जा कुत्ता मेरे काबू आ गया। मैं सोचता सा कितने नुकरे बह के इसे नूं चब लवां, इसे नूं भुन के जिवें भी होवे इस नूं खा लवां ते अपने पेट की अग बुझा लवां। साहब कहन लगे इहनूं लंगर छकाओ, सोहणे बस्तर पुआओ। कहन लगा महाराज मैं तुहाडा दुश्मन हो सकना, दोखी हो सकना, लंगर छका दिओ तुहाडी बड़ी कृपा है, क्योंकि तुहाडे दर ते तां न्याय वापरदा है। साहब कहन लगे तू इत्थे ही रहेगा। कहन लगा महाराज सारे मैनूं शक दी निगाह नाल वेखणगे। साहब कलगीधर पातशाह हस पए, कहन लगे नहीं इत्थे भाई कन्हैया वर्गे बेअंत ने, जिहड़े किसे नूं दुश्मन नहीं समझदे, किसे नूं वैरी नहीं जानदे, तू इत्थे रहेगा। आम उन्हां समयां च टकियां च रुजीने मिलदे सन, साहिबां ने रुपया रोज दा ला दिता। कहन लगे इहनूं गुजरान मात्र रुपया रोज दा दिओ। कहन लगा साहब जी किस गल दा, तुसीं इह रुपया रोज मैनूं किस गल दा बख्शदे। साहिब कहन लगे भुखा दा मारे हैं, गरीबी दा मारे हैं, देशों परदेश आया कमाउण वास्ते, तेरे बाल बच्चियां वास्ते, तेरी किरत मात्र, कि महाराज मैं करांगा की। साहब कहन लगे जो तेरा जी करदा है, इत्थों कुछ होवे तेरा शरीर जरे ते कर लई, ना कीता जावे तां वी कोई डर नहीं। गद गद हो गया, गुरु कीआं रहमतां पा के फिर डेरा नहीं छड्डिया, गुरु का डर नहीं छड्डिया, सेवा च लग गया। इतनी सेवा कीती गुरु के सिखां दे नाल, जूझदा ही शहीद हो गया, गुरु के चरण नहीं छड्डे। कई बारी सिखां ने कहा हुण तां तकड़ा हो गया, पैसे भी हो गए, हुण तां निकल जाए इत्थों, तेरी जात बरादरी वालिआं ने, तेरे बंदिआं ने वेख लिया तैनूं काफिर कहणगे, तैनूं दोषी करार देणगे। उह कहिंदा नहीं, दोष निकल गए जीवन विचों, जिसने खुदा नाल जोड़े है, इन्ना पर उपकार ते इन्नी समदृष्टि बख्शिश कीती है, जे उहने मेरे नाल वैर नहीं कमाया, उहदिआं ने मेरे नाल वैर नहीं कमाया, ते मैं इहनूं छड्ड के होर किहदे कोल चला जावां, इहदे चरणां दे विच बाकी दी जिंदगी बतीत होवे। इह सच जानना इक पठान दी गल नहीं, साडे किन्ने ही दुख, उहदी इक भुख दा दुख महाराज ने दूर कीता ते हमेशा वास्ते विक गया गुरु चरणां तों, साडे किन्ने दुख सतगुरु दूर कर दे। गुरु के सिख दा की फर्ज बनदा, उह सदा इह गल हिरदे च धारण करके रहे कि साहिब तेरे दर तों सरदारियां पाईआं ने, भुखां मिटियां ने, मान मिलिआ है, भरम मिटे ने, दूई मिटी है, हिरदे नूं शांति प्राप्त होई, बड़े सुख पाए ने। मेरे ते तेरी रहमत होवे ते ए होवे कि मैं तेरे नाल जुड़िया जुड़िया अपना जीवन सफला कर जा। आपां हुणे शब्द पढ़िया सी ना, डिगन डोला तऊ लो जो मन के भरमा, बंदा डिगदा डोलदा ते डगमगाउंदा सिर्फ उन्ना चिर है जिन्ना चिर मन च भरम ने, दुई भाव है। जिसले हिरदे विचों दोष निकल जाण, भरम निकल जाण, बंदे नूं चैन आ जांदा। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा, जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया।

सिंह सच्चे पातशाह तू सब दी मदद करन वाला है। जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करता है। और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करता है। सात जगत बोलो श्री ना सुनो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एक दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह आख्या धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु दा खजांची है। जो अकाल पुरख वाहेगुरु दे खजाने विच बख्शीशा हन तू उन्हां नू वंडन वाला है। साथ सकत बोलो श्री हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु नू जानिया है इस वास्ते संसार विच तू महाराजियां दा महाराज है। तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं। इस वास्ते मैं सारे संसार नू छड़ के तेरे चरणों विच आया हां।

मेरी चोली किसे ने नहीं भरी, इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जांदी, ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर के ही जांदा। सत सगत बोलो श्री, इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह गुरु।

बेगरा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिलरा राह गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरी वर्गी कोई तेग नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया का दिलों का हाल जानता है, क्योंकि तू अंतर जामी है। इस वास्ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाण। तेग रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा रहा गुरु गोबिंद सिंह। साहिब दे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज का मालक है, संसार का मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पाणी नू मनन वाला है। सात संगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जदों आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 के करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे नाल, ते जाउंदियां जाउंदियां जदों अमृत वेला होया ते साहब जी ने आख्या, भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हन कीर्तन नहीं सुनिया, ते वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनिया तां सानू कीर्तन सुनाओ। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे, पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा दा भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दे सारे हो, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे हैं। सत संगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए। सुध साहब जी ने अकाल पुरख दे चरणा विच शीश चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता। साहब जी कहन लगे, दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते। दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणा दे नाल कीर्तन विच जुड़े हैं, उसकी जड़ी भगती की है, असी ए सौदा सस्ता कीता है। सत संगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नु शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह। आप दे उस वेले 9 साल दी उम्र सी, हिंदू धर्म दी रखिया दी खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर दा किला उजड़ गया, चार साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी
बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां सिखां दे उपरों धर्म दी रक्षा की खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म की खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया, आ सारा सरबंस दान कर दिता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सात सगत बोलो श्री आख्या। और शुरवीरता तेरे विच किडी के चमकौर दी गड़ी विच जदों बेअंत दुश्मना दी फौजा घेरा पा के खड़ोतियां हुईयां, ते अंदर थोड़े जे सिख चमकौर दी कच्ची गड़ी, दो दो चार चार सिंह करके जाऊं बार, ते दुश्मना दे कई दलां दे दल मार मुकाऊं, ते आप फिर शहीदियां पा जाऊं। उस वेले जिस वेले बेअंत फौजां ने दुश्मन दिया चमकौर दी कच्ची गड़ी नूं घेरा पा के खलारिया, ते आप घोड़े ते चढ़ के आवाज दे के गए कि हिंद दा पीर जा रहा, जे जे किसे विच हिम्मत होवे ता उसनु रोक के दसो। सात सगत बोलो श्री। अनेका ही नू साहब जी दी तलवार प्या शो प्राप्त होई, दुश्मना दे सिर वाह के साहब जी उस चमकौर दी कच्ची कड़ी विच अगा लंघ गए, दुश्मन घेरे नू तोड़ छड़िया। तेरे वर्गा शुरवीर होर कौन हो सकता है, तेरे वर्गा भगत संसार विच कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा दानी कोई नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरे वर्गा शुरवीर कोई नहीं। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं, मुसव्वर खेंच ले तस्वीर ये तुझको रिसाई है, दसम गुरु बैठे मसलत पर सभा अपनी लगाई है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, यहां के शहनशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है, मिला तुझ सा मुझे मुर्शद मेरी तकदीर अच्छी है। सात सगत बोलो श्री। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी उस्तत करदे हुए भाई साहब भाई नंद लाल जी

एक होर शब्द विच अपनी जीवन दी ओ झाकी दर्शा रहे ने, जो कुछ उन्हां नाल बीतिया, जो कुछ उन्हां नाल कीता गया। कहंदे हन एक वारी दा जिक्र है, मेरिया बाहां बन के लत्तां बन के गठड़ी दा रूप दे के, गठड़ी वंगर जिवें गठड़ी बद्धी हुंदी, मैनूं हाथी अगे सुटिया गया। पूजा बांध पिला कर डारियो, पर वाहिगुरु तेरा लख लख शुक्र है, हाथी नू उस गठड़ी विचों पता नहीं कैसा अक्ष पिया, की दिसिया, हाथी चीका मारदा भज गया।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां पर मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले ले नमस्कार, बूजी नहीं काजी अंधियारे, तीन बार पतिया भर लीना। कहंदे ने होनी नहीं, इन्होंने तीन बारी अगे भी मेरी परीक्षा ली, तीन बार पतिया

0: पूर पूर देख दे,
1: फाट गए ने कागज तुसा दे लेख दे, हार गए तुसानू समझौ दे कल दे, देखांगे तसीरे तुसी किवे नहीं चल दे, पाप दिया पंडा ने जलाद बन दे, साहिबजादे इन